0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: कैनेडा सरकार जमानत ते सजा दे कानूना विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक ते बार बार अपराध करन वालियां नू भाईचारे तो दूर रखन लई सिस्टम विच सुधार ता जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वलों एक सुनेहा।
2: East FM 102.7